पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले बिहानको 9 बजे।

0: तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। चैनपुर छ, चैनपुर बजार, त्रिचोक। प्रोभाइडर पदम रसाइली, ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9153 87 775।
1: Manaslu World College, a home for future leaders. Chavahil, Kathmandu.
2: Hey,
3: Panchriya. Mahashivratri ko din, tapaiharuko najikko cinema gharma, Nepali kathanak chalchitra, Laaj Sharanam.

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो 2 बज्यो।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास में हमारे दोस्त शम्स आलम जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।

खाए नि सब खाए नि रक्सी भने रक्सी निचाके रक्सी सबै होटल बाल्ने पोकी सुरु सुरुमा जा।